मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आंशिक संवाद 1947 ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी तिथि तदनुसार सन 2026 जून महीने की दिनांक 27 और दिन है शनिवार। श्रोताओ आपसे लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्री संगी बम्पा सिरथेपा, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हेमंता स्वर्गिरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक श्री लोबसंग नोरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कर्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिट्टी न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: possibly heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
2: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला किया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों

0: की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौड़ में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अन्य प्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद हिंदी भक्ति गीत। लीजिए श्रोताओं पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद भक्ति गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद वांगचो आधुनिक गीत। इसके गायक कलाकार है वांग्यप वांगसो। लीजिए श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद वांगचो आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वंगचो आधुनिक गीत। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम मेरी बात। इसके अंतर्गत आज आप सुनिए जेएनवी तवांग के 11वीं साइंस की कक्षा की छात्र मिस तेंजिन पेमा से नियमित योग और व्यायाम का महत्व विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी तंजन पेमा, पीएम श्री जेएनवी तवांग। मैं 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं। आज की कार्यक्रम में मेरी बात का विषय है नियमित योग और व्यायाम का महत्व। आजकल हम ज्यादातर समय मोबाइल फोन, टीवी और किताबों के साथ बैठकर बिताते हैं। इससे हमारा शरीर सुस्त हो जाता है और हमें जल्दी थकान महसूस होती है। ऐसे में योग और व्यायाम करने से शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। योग करने से हमारा शरीर लचीला और मन शांत रहता है। रोज योग करने से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और हमारा मन खुश रहता है। योग जैसे प्राणायाम करने से सांस से जुड़ी समस्याएं भी कम होती है। व्यायाम जैसे दौड़ना, खेलना, साइकिल चलाना या हल्की कसरत करने से शरीर मजबूत बनता है। इससे मोटापन कम होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। व्यायाम करने से शरीर में ताकत आती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। योग और व्यायाम से हमें अनुशासन भी सीखने को मिलता है। जब हम रोज समय से उठकर योग या व्यायाम करते हैं तो हमारी दिनचर्या सुधरती है। छात्रों के लिए यह बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे ध्यान लगने की शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम हर काम अच्छे से कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें रोज थोड़ा समय निकालकर योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए। यह हमें स्वस्थ, खुशी और सफल प्रदान करता है। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जेएनवी तवंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस तेंजिन पेमा से नियमित योग और व्यायाम का महत्व विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा इस संदेश के बाद।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तुमने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी

संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म सुल्तान से, राहत फतेह अली खान की आवाज में। विशाल और शेखर द्वारा संगीत पद पर इसे लिखा है इर्शिद कमिल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है लियोन डिसूजा और सुजानी डी मेलो के स्वरों में फिल्म एक दीवाना था से। गीत जावेद अख्तर के है व संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म पुष्पा से जावेद अली की आवाज में। इस गीत के गीतकार है रशीद आलम तथा संगीतकार देवश्री प्रसाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो चुके हैं। लीजिए, अब हम आपके खिदमत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म शेर शासी, जुबीन नौटियाल और एसिस कौर के स्वरों में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है तनिष्क बागजी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म बजरंगी भाईजान से जुबिन नौटियाल की स्वर में। नीलेश मिश्रा के रचे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, इर्शिद कामिल द्वारा शब्द रचना पर फिल्म कबीर सिंह से सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर के स्वरों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है सचिन परंपरा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गुड बाय से अमित त्रिवेदी के स्वर में। स्वनन किरकिरे के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म सुल्तान से यह गीत गायक राहत फतेह अली खान के आवाज में। इर्शद कमल के रचे इस गीत को संगीत दिया था विशाल और शेखर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए अगला गीत पेश है फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह के स्वरों में। अन्विता दत्त द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत पेश है मोहित चौहान की आवाज में फिल्म पेडी से। आलम द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म दो पति से। परंपरा तेंदन के आवाज में गीत कोसार मुनीर के है व संगीत सचित परंपरा का।

श्रोता कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनिए फिल्म श्रीकांत से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार के स्वरों में। गीतकार है श्लोकी लाल तथा संगीतकार तनिष्क बागची।

श्रोताओ, फिल्म श्रीकांत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से शहनाई वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के कई पन्योर जिला उपायुक्त ने पुष्टि की है कि अचानक आई बाढ़ से प्रभावित पोसा इलाके में एसडीआरएफ टीम के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज दोपहर एक और शव बरामद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेलेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेलेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर के प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिला स्थित जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नूरानाम की लड़ाई में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को

को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मेडिकल स्पेशलिस्ट भर्ती 2026 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी के पद पर कुल 70 डॉक्टर का चयन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ईटानगर द्वारा नामसाई में इंटरनेशनल MSME डे के अवसर पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर एक टाउन हॉल बैठक का आयोजन। मौसम विभाग के अगले 2 दिन में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के कई पेन्योर जिला उपायुक्त स्वेता नगरकोटी ने पुष्टि की है कि अचानक आई बाढ़ से प्रभावित पोसा इलाके में SDRF टीम के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज दोपहर 12:30 पर एक और शव बरामद किया गया है। जिला उपायुक्त ने बताया कि शव की पहचान 30 वर्षीय बालारी मारक के तौर पर की गई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि अब तक 2 शव मिल चुके हैं और 3 लोग अभी भी लापता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेलेस पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेलेस के राष्ट्रपति डॉक्टर पेट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पेट्रिक हार्मनी को सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेलेस हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेलेस के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक ने आज ईटानगर के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और बचाव के लिए राज्य पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेना था। राज्यपाल ने अभियोजक निदेशालय को मजबूत करने की सलाह दी। पूरे राज्य के नजरिए को अपनाते हुए राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस मुद्दे को मिशन मोड में लेना चाहिए और जिला स्तरीय पर आपसी तालमेल के साथ प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिला स्थित जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नूरानाम की लड़ाई में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत प्रदान किए गए महावीर चक्र के सम्मान में तथा अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि इन वीरों के बलिदान को स्मरण करना उन सभी सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता को पुनः दृढ़ करता है जिन्होंने साहस और निस्वार्थ समर्पण के साथ देश की संप्रभुता की रक्षा की है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मेडिकल स्पेशलिस्ट भर्ती 2026 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जूनियर स्पेशलिस्ट एलोपैथी के पद पर कुल 70 डॉक्टर का चयन किया गया है। चयन इस माह की 22 से 26 तारीख के बीच आयोजित साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू
उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

0: राम बागे ने सभी चयनित डॉक्टर को बधाई दी है। अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ईटानगर द्वारा नामसाई में इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर एक टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य की आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में लाए गए एमएसएमई फेलिसिटेशन ऑर्डिनेंस 2026 एमएसएमई लोन प्रक्रिया के लिए बैंक ब्रांच में सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्टअप के लिए अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 5.0 और दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना व अरुण एमएसएमई मिशन जैसी दूसरी खास पहलों के बारे में बात की। ये योजनाएं राज्य के युवाओं और महिला उद्यमियों को अच्छी खासी कैपिटल सब्सिडी और ब्याज पर छूट देती है। उन्होंने नए उद्यमियों और महिला एसएचजी सदस्यों से अपील की है कि वे नौकरी खोजने के बजाय आत्मनिर्भर और नौकरी देने वाले बनने के लिए इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पकम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम के मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तावांग, कुरुंगकुमे, शियोमी और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिक्स ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान में नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Seychelles in a short while on a 3-day visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Earlier in his departure statement, the Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faux said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a

मिरी में फेक 97.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। कार्यक्रम जरोखा से पहले सुनिए एक जरूरी सूचना। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग से प्राप्त सूचना अनुसार तवांग के सभी माता पिताओं को यह अनुरोध किया जाता है कि कल यानी 28 जून 2026 को IPPI यानी इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पताल में अपने बच्चों को ले जाकर 2 बूंदे पोलियो की खुराक जरूर पिलाए। कृपया इस सूचना को फिर एक बार सुनिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तवांग से प्राप्त सूचना अनुसार तवांग के सभी माता पिताओं को यह अनुरोध किया जाता है कि कल यानी 28 जून 2026 को IPPI यानी इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पताल तवांग में अपने बच्चों को ले जाकर 2 बूंदे पोलियो की खुराक जरूर पिलाए। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित की जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों व कल प्रसारित की जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित की जाने वाले आज प्रसारित की

जाने वाले कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदुन लेरिम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे यूथ वेलफेयर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन सोसाइटी मुक्तो के लामा संघे छेदर और साथियों से ड्रोचो। 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र तवंग डॉ. दिव्या पांडे से स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार विषय पर भेंट वार्ता। शाम के 7:32 पर आप सुन पाएंगे दोनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज। इसमें आज आप सुन पाएंगे फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर आनंद लीजिएगा गायिका लता मंगेशकर के स्वर में एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा पसंद किए गए चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:15 पर सुनिए आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9 सुने न्यूज एट 9। तो श्रोताओ ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 28 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओ कल हमारी सभा आरंभ होंगे सुबह के 10:38 पर। सुबह के 10:45 पर आप सुनिए भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें कल आप सुन पाएंगे हरिहरन सुरेश वाटकर और साथियों से चंद हिंदी भक्ति गीत। कल सुबह के ठीक 11 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मन की बात का 135वीं संस्करण के अंतर्गत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपनी मन की बात साझा करेंगे। इसके तुरंत बाद श्री लोपसंग तोप्तन द्वारा इसका मनपा अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा। दोपहर के ठीक 2 मिट्टी न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें कल आप सुन पाएंगे लामा करसंग और साथियों से बोध भक्ति गीत। 3 विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे जेएनवी तवंग के 9वीं कक्षा की छात्र मिस जोईछुंग रोजू से नशा मुक्त समाज की आवश्यकता विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म चक डे इंडिया से हेमा सिरदेसाई, फिल्म दिल धड़कने दो से सुनिधि चौहान, फिल्म महाराष्ट्र से मोनाली ठाकुर, फिल्म लापता लेडीज से अरिजीत सिंह, फिल्म आयशा से अमित त्रिवेदी, फिल्म मेरे ब्रदर्स की दुल्हन से नेहा बसीन के स्वरों में चंद गीत। कल शाम के ठीक 4 आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रतिध्वनि। शाम की 4:30 पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग।

बजकर 45 मिनट पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। शाम के 5:35 पर सुनिएगा रिक्शुंग लेरिम। कल शाम के 6 बजे लेरिम सेरा। 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम के 6:20 का वक्त रहेगा यूथ वेलफेयर एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन सोसाइटी मुक्तो के लामा संगे सिदर से ड्रोइछो। कल शाम के 7:10 पर कवाली गीतों का कार्यक्रम महफिले कवाली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे फिल्म वो तेरा नाम था से सबरी ब्रदर्स और साधना सरगम, फिल्म कच्चे धागे से नुसरत फतेह अली खान, फिल्म इंडियन बाबू से सबरी ब्रदर्स और जसविंदर नरूला की स्वरों में चंद कवालिया। कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ आप आनंद ले पाएंगे कल शाम के 7:25 पर। इसमें कल हम प्रस्तुत करेंगे कोंकणी भाषा में एक गीत और पाठ। कल शाम के 7:55 पर आने लीजिएगा एक देशभक्ति गीत। कल रात के ठीक 8 बजे कार्यक्रम मन की बात का 135वीं संस्करण का मनपा अनुवाद श्री लोबसंग तोपतन से। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, यदि हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम चरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 6:20 पर मनपा में कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महा

0: सचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a three-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. US Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of the US's closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust has officially acknowledged the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, Swami Govind Dev Giri Maharaj, today issued a statement on this issue. The statement says that the resignations will be discussed in the next meeting. It also showed that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust in this letter said that it is deeply saddened, hurt and extremely distressed.

0: by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report, with legal proceedings underway. In Tamil Nadu, the MDMK party, led by Vaiko, has ended its nine-year alliance with the DMK. The party general secretary, Vaiko, led a general council meeting in Chennai today, during which a general resolution was passed for withdrawal from the alliance. The MDMK alleged that attempts were made to weaken the party. The MDMK has two MLAs in the assembly. The India Meteorological Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. In US Open Badminton, India's Devika Sehak, Kidambi Srikanth and Ronak Chahan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games, winning 20-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Zhu Fu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chahan also advanced, beating Israel's Misha Zilmaben 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match at Yasushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Isha Kundarapu and Kirti Manchala gave India a strong start. Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then extended India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably seal the tie. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र तवंग डॉ दिव्या पांडे से स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार विषय पर हुए भेंट वार्ता। भेंट करता है मिस पेमा दिचिन और मिस मुइट्रुप ड्रेमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तवंग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। तो श्रोताओं, हमने हमारे आकाशवाणी तवंग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दिव्या पांडे जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र तवंग में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस में कार्यरत है। मैं मोटी प्रेमा और मेरे साथ है मेरे सहपाठी मिस पेमा दिचिन। हम दोर्जे खंडू राजकीय महाविद्यालय के चौथी सत्र की छात्र है। जी तो दिव्या मैम, सबसे पहले आपका आकाशवाणी तवंग में और हमारे कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: थैंक यू सो मच।
2: तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर दिव्या पांडे से बैलेंस डाइट फॉर ए हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे कि संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण एवं जरूरी है और किस तरह हमें हमारी दैनिक जीवन की संतुलित आहार को बरकरार रख सकते हैं। तो दिव्या मैम, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहूंगी कि संतुलित आहार क्या है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है।
3: थैंक यू आकाशवाणी तवंग। और जो आप बैलेंस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम तो जितने भी तरह का फूड है वो एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए थ्रू आउट द ईयर। और जो भी आप फूड ले रहे हैं वो आपको ध्यान में रख के लेना होगा कि वो न्यूट्रिशनल है कि नहीं है
2: जी।
3: वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो जो भी हमारे अनाज हैं, दालें हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फैट्स एंड ऑयल्स है, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे पोषक तत्वों से भरपूर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो सारे फूड को अच्छे से ग्रहण करना ही बैलेंस डाइट का उदाहरण है।
2: जी तो बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे श्रोताओं को संतुलित आहार के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। तो मैम, मैं आपसे अगला सवाल यह पूछना चाहूंगी कि एक सही आहार में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं।

0: जो हमारा बैलेंस डाइट है वो एसेंशियल न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे अमाउंट में आपको लेना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हमारे 6 तरह के होते हैं 6 तरह के होते हैं। उसमें फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन एंड मिनरल्स है, डाइट्री फाइबर है और वाटर है। ये 6 जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अति आवश्यक अंग है और इसको हमारे डाइट में लेना बहुत ही कंपल्सरी होता है। कोई एक चीज लेने से, केवल कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारे बॉडी के दैनिक जो दिनचर्या में हमारे एक दिन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगा जब तक कि आप अपने डाइट में भरपूर तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स एक निश्चित अमाउंट में, निश्चित मेजरमेंट में लेंगे, तभी वो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए।
1: तो मैम, क्या सही खानपान या संतुलित आहार हमारे मानसिक स्थिति पर असर डालता है?
0: बहुत ज्यादा डालते हैं, क्योंकि केवल अगर आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लिया है तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन उसमें अगर प्रोटीन का पोर्शन नहीं रहेगा तो आपके जो बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का जो काम करता है, हाँ, कहीं भी टिश्यू जो रिपेयरिंग का काम करता है वो नहीं हो पाएगा। फिर आपके बॉडी में डाइट्री फाइबर भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा, तो वो सारी चीजों को मिला के वो आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा। तो एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए।
1: मैं आपसे कि यह भी पूछना चाहूंगी कि क्या 3 समय भोजन जरूरी है या दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा लाभकारी है?
0: 3 समय ही भोजन जरूरी है और फर्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत एसेंशियल है, क्योंकि लंबा समय तक गैप रहता है जब तक आप बेड पे नहीं जाते हैं रात में सोने के लिए आफ्टर डिनर, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, लंच बहुत जरूरी है, डिनर। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तब आप 4-5-6 मील ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो 3 मील्स एनफ है।
1: जी, तो मैम, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की कई जगहों में तो खाने की चीज़ों को जलाकर खाते हैं या तो धुएं में यानी स्मोक में सुखाते हैं, तो इसके कारण उन खाने की चीज़ों पर एक काली परत से पड़ जाते हैं, तो क्या उसे खाने से हमारे शरीर में कुछ नुकसान होते हैं या हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी बन सकती है?
0: ऐसा नहीं है, और जो रोस्ट करके, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है अधिकतर बॉयल्ड खाते हैं वो लोग, तो जो रोस्ट करके खाते हैं उनका मैं आपको पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि जो रोस्ट करके खाते हैं उसके लिए वो जो ऊपर की परत है आप बोल रहे हैं कि जल जाते हैं, उसको तो निकाल के ही खाते हैं ना, तो वो हटा के अच्छे से साफ करके अगर खाते हैं तो वो हेल्दी है, कोई उसमें खराबी नहीं है। और सबसे हेल्दी तो आपका जो बॉइल्ड करके आप लोग खाते हैं, मीन्स की ब्लांच करके, कोई भी वेजिटेबल्स को अगर आप ब्लांच करके खाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट लॉसेज बहुत कम होते हैं।
1: तो मैम, आपने कहा कि जो स्मोक में जला कर खाते हैं, तो अगर उसको बाहर का जो जला है
0: अच्छे से साफ करके यूज करें तो दिक्कत नहीं,
1: कोई दिक्कत नहीं है,
0: कोई प्रॉब्लम
1: जी। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यह पूछना चाहूंगी कि जो लोग मांस या कुछ अन्य खाने पीने की चीजों खा लेती है उन्हें तो पर्याप्त पोषण मिल जाती है, तो मगर जो वेजिटेरियन और जो खास करके वीगन होते है वो तो डेयरी प्रोडक्ट्स तक नहीं खाते है, तो उन्हें अपनी सही आहारों के पोषण कैसे मिल सकेंगे?
0: वेजिटेरियन में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो आपका लेग्यूम से पल्सेस से कंप्लीट होंगे। और पल्स में भी मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि मिक्स दालें यूज करें, केवल एक मसूर दाल नहीं खाएं और मिक्स दालों का यूज करें। और जितने भी तरह की दालें, या आपके यहाँ पे सोयाबीन बहुत अच्छा है, उसमें 40% प्रोटीन पाए जाते हैं सोयाबीन में, और उसका यूज करें, वो आपके जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा।
1: थैंक यू। आपको मैं दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि जैसे जीवन शैली से जुड़ी बीमारी की रोकथाम या संतुलित आहार उन बीमारियों के लिए लाभदायक या फायदेमंद हो सकते हैं?
0: संतुलित आहार आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है और लाभदायक है। आप वैरायटी ऑफ फूड खाइए और जितना हो सके पानी बहुत ज्यादा पीजिए। उसके बाद से प्रोटीन की जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, अगर मेल्स है तो 60 ग्राम, फीमेल्स है तो 60 ग्राम, वेट के अकॉर्डिंग जो है इसका डिसाइड है, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च जो ICMR है उन्होंने डिसाइड किया कि 60 ग्राम प्रोटीन हर दिन आपके डाइट में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप राइट

0: प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं
1: जी।
0: जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आयरन की रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप राइट प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और वो बैलेंस डाइट हमेशा आपके लिए हेल्दी ही रहेगा।
1: जी जी मैम। तो दिव्या मैम, मैं जानना चाहूंगी कि जो छोटे आयु और जो दीर्घ आयु के लोग होते हैं, जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और एडोलेसेंट और प्रेग्नेंट वुमेन, उनके संतुलन आहारों में सामान्य होना चाहिए या उनके आहारों के अंतर होनी चाहिए?
0: हर स्टेज पे डाइट की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसको एनर्जी गिविंग फूड ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एडोलसेंट है, गर्ल्स या बॉयज है, उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, इस वजह से उनके डाइट की रिक्वायरमेंट अलग होगी। उनको बहुत ही हेल्दी डाइट की जरूरत है, खास करके जो गर्ल्स हैं उनको आयरन रिच डाइट की जरूरत है। फिर जो एडोलसेंट बॉय है दोनों को कैल्शियम रिच डाइट चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बाकी आपका जितना भी तरह का कार्ब्स है, प्रोटीन है, ये सब तो निश्चित अमाउंट में मिलेगा अकॉर्डिंग टू वेट जो है, और प्लस अकॉर्डिंग टू एज ये होता है कि आपको कितना अमाउंट में प्रोटीन लेना है, कितना अमाउंट में फैट लेना है, कितना अमाउंट में विटामिन लेना है। प्लस आप अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो नॉर्मल जो एक फीमेल है उससे उसका आयरन और कैल्शियम वो बढ़ जाते हैं। अगर नॉर्मल लेडीज 25 mg आयरन पर डे ले रही है तो जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, वो 30 mg आयरन उनको हर दिन उनके डेली डाइट में रिक्वायरमेंट उनकी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर कैल्शियम उनका पर डे का रिक्वायरमेंट, अगर वो फॉर एग्जांपल 1 glass मिल्क ले रहे हैं अगर, तो उनका जो एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो 2 glass मिल्क, तो 100 mg आपका कैल्शियम होना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन। इसी के साथ साथ जो लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, उनकी भी कैल्शियम और आयरन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज रहेगी एक नॉर्मल फीमेल से। ये हो गया। इसके साथ ही आपका जो एल्डरली पीपल है, जो ओल्ड एज पीपल है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी डिफरेंट होगी। डिपेंड करता है कि उनके बॉडी का वेट कितना है
1: जी मैम,
0: उनकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग, प्लस वो कौन सा वर्कर है, सिडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, हैवी वर्कर है, उसके अकॉर्डिंग उसका कैलरीज कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं।
1: तो मैं आपसे अगला सवाल यह पूछना चाहूंगी कि क्या गर्म या प्लेन जगहों की तुलना में पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में संतुलित आहार का क्या अंतर होता है?
0: मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। तो पहाड़ों पे भी बहुत अच्छे से आपके संतुलित आहार मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज बहुत अच्छे अमाउंट में मिलती है। बस आपको जानने की जरूरत है कि हमारे बॉडी के लिए क्या एसेंशियल है, क्या जरूरी है, और राइट प्रोपोर्शन में, बैलेंस डाइट में आपका राइस भी होना है, रोटी भी होना है, दाल भी होना है, सब्जी भी होना है। तो एक आपको कलरफुल प्लेट आपको थाली में होना चाहिए, तब जाके फिर वो आपका बैलेंस डाइट होगा। अदरवाइज आपका केवल राइस लेने से और एक कोई वेजिटेबल्स लेने से वो आपका बैलेंस डाइट नहीं होगा, जब तक कि एक आप राइट प्रपोर्शन में पूरी थाली जो है कलरफुल। क्यों बोला? क्योंकि जितने भी तरह के वेजिटेबल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत हेल्दी हैं आपके बॉडी के लिए। इस वजह से राइट प्रपोर्शन में आप अपने बैलेंस डाइट को देखते हुए और पूरी थाली आपकी हर फूड न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए, तो वो बेस्ट है आपके लिए।
1: जी मैम। तो अब मैं चाहूंगी कि आगे का वार्तालाप मेरे साथी मिस पेमा डिचिन जी जारी रखे।
2: जी धन्यवाद। तो मैम आपने जिस तरह कहा कि हमारे जो आहार में 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और हमारे जो भोजन है वो भी कलरफुल होने चाहिए, राइस, रोटी, दाल, सब्जी, ये सब। तो जो अमीर है, जिनके पास धन है, वो तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन कम आय वाले जो परिवार हैं उनके लिए संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए कुछ सरल और सस्ते उपाय आप देना चाहें।
0: जो हमारा बैलेंस्ड डाइट है वो जो हम आपको बता रहे हैं वो सारे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सारे विलेज में अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से वो मिल जाते हैं। फार्मर्स हमारे ग्रो करते हैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जो वो खेती में कर रहे हैं उन्हीं में से उनको यूज करना है। प्लस उनको बार बार बताना है कि हर दिन आपके जो पल्स है कि दालें हैं वो बहुत बॉडी के लिए जरूरी है, रेगुलर आपके डाइट में होना चाहिए वो बोल के। प्लस उनको

0: बताना है, मेरा जो संदेश है वो यही है, मैं बताना चाहूंगी कि उसमें दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है और आपका वेजिटेबल्स है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो इसकी भरपूरी करने के लिए कोई और अल्टरनेट तो नहीं है, आपको ये डाइट लेना ही पड़ेगा। और जहां तक रिच डाइट की बात है कि हम कोई प्रोसेस्ड फूड या इस तरह के फूड तो यूज नहीं कर रहे हैं, या हमने कुछ भी आपको बटर, घी ये सब चीजें नहीं बोला अभी, हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी उसके बारे में आपसे डिस्कस किया, तो ये चीजें आपको होंगी और ये विलेज में भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग खान पान करें तो ठीक रहेगा।
1: जी मैम, तो मैम आज के समय में लोग कामकाज में काफी व्यस्त होते हैं, जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी काफी वक्त अपना सही भोजन करने का जो समय है वो नहीं मिलता, तो उन छात्र छात्राओं जो कामकाज में व्यस्त है उन लोगों के लिए संतुलित आहार बनाए रखने का कैसे संभव है?
0: जो फूड हैबिट है उसको डिवाइड करके ब्रेकफास्ट में केवल चपाती या कोई एक वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, आफ्टरनून में राइस और पल्स का कॉम्बिनेशन लेके यूज कर सकते हैं, ये दोनों मस्ट है, तो उनका जो बैलेंसिंग बना रहेगा कि मीन्स मॉर्निंग में उन्होंने कोई एक सीरियल्स ले लिया या मिलेट्स को यूज कर लिया, आपका जो मिलेट्स है वो सुपर फूड है, तो अगर आप मिलेट की कोई एक बनी हुई चीज खा रही हैं तो वो आपके सारी चीजों को फुलफिल कर देगा, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर आप मिलेट से यूज करेंगे तो उसमें आपकी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि उसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सारे जो मिनरल्स हैं वो भी तत्व मौजूद है, तो वो आप यूज कर सकते हैं।
1: जी मैम, तो आपने पहले कहा कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो हमें जरूर खाना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है लाइट करना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा भारी ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो दिन को हमें नींद आएगी, तो कुछ ऐसे कहते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो थोड़ा हैवी खाना चाहिए, क्योंकि दिन में जो हम काम करते तब हमारा सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, तो इसमें कौन सी बात सच है और कौन सी बात गलत है और क्यों?
0: मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बात में बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि रात में लंबा टाइम तक हमारा जो जब हम सोते हैं तो पेट जो है वो एकदम खाली हो जाता है, इम्प्टी हो जाता है, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए, हेल्दी लेना चाहिए, लाइट ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, और उससे आपका एनर्जी गिविंग ब्रेकफास्ट होना चाहिए, मीन्स कि आपको उससे नींद नहीं आएगा, जब आप लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे तब आप लेथार्जिक फील करेंगे, तब आपको आलसी फील होगा, आपको नींद आएगा बार बार, बार बार लगेगा कि स्टमक मेरा खाली है, कुछ खाने को मांग रहा है, ऐसा फील होगा। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, इवन आपका जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए।
1: जी मैम।
0: और वो 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए।
1: जी मैम, तो आपकी इन बातों को सुनकर हमारे काफी श्रोताओं की जो गलतफहमी वो दूर हो गई होगी। तो मैम, डिनर में जो हमें भोजन कैसे करने चाहिए, लाइट या हैवी मैम?
0: डिनर में तो आपको लाइट करना चाहिए, हैवी नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग और आफ्टरनून में आपको हैवी लेना चाहिए।
1: जी मैम, जैसे कि आपने कहा आपने न्यूट्रिएंट्स में पानी पीने की भी बात कही, तो हम लोग संतुलित आहार में पर्याप्त पानी का क्या भूमिका है, और खाना खाने कितने समय बाद पानी पीना चाहिए, या खाना खाने से पहले हमें पानी पीना चाहिए?
0: नहीं, खाना खाने से पहले ही पानी पी लेना चाहिए ऐसा नहीं है, आपका पर डे जो आपकी रिक्वायरमेंट है 8 to 10 glass वाटर आपके डेली होना चाहिए, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेट बने रहने के लिए पानी बहुत तो आवश्यक अंग है हमारे बॉडी का, वो नहीं रहने से फिर बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देता है, पानी नहीं रहने से आपका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, और आप में बैलेंसिंग नहीं होने से बहुत सारे आप बीमारियों को बुलावा देते हैं, तो इस नाते पानी बहुत बहुत आवश्यक है आपके शरीर के लिए।
1: जी मैम, तो मैम आजकल जो बच्चे हैं यहाँ तक कि बड़े लोग भी जंक फूड, फास्ट फूड के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं होते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ स्वस्थ विकल्प सुझा सकती हैं?
0: प्रोसेस्ड जो हमारे फूड हैं वो बहुत ही अनहेल्दी हैं, बिल्कुल ही अच्छे नहीं है प्रोसेस्ड फूड, इस नाते होल अनप्रोसेस्ड फूड यूज करना चाहिए आपको, और उसको कंपनसेट करने के लिए या उसका बाय प्रोडक्ट ध्यान देना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मिलेट पे ज्यादा फोकस दे रही हूँ आजकल, तो मिलेट के बाय प्रोडक्ट बहुत सारे हैं आपके, उसके बाय प्रोडक्ट बना के उसको बच्चों को आकर्षित करना चाहिए या बड़ों को कि नहीं उसके क्या क्या, आप उसके केक भी बन सकते हैं, बिस्किट बन सकता है, नमकीन बन सकता है, लड्डू बन सकते हैं, फिर उसका चपाती बन सकते हैं, डोसा बन सकते हैं, इडली बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जंक फूड

0: वही सारे, तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें, प्लस इतना फैटी है वो और बहुत ही अनहेल्दी है। इस नाते कोशिश करिए आप घरों पे जितने भी न्यूट्रिएंट रिच जो हमारा सीरियल्स है उसका क्या क्या बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, खास करके आपके यहाँ तवांग में सोयाबीन बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, उसका बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, मेज के बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, फिर मिलेट के बाय प्रोडक्ट आपको बताया मैंने, ये सारे बाय प्रोडक्ट का आप यूज करके उसको फुलफिल कर सकते हैं।
1: जी मैम, अभी आपने कहा कि आप मिलेट्स पर ज्यादा फोकस करें, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि मिलेट्स में ऐसे कौन से प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं?
0: मिलेट्स बहुत तरह के होते हैं, खास करके आपके तवांग में फिंगर मिलेट पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे आपके पासीघाट एरिया, नामसाई एरिया, ये सब में फॉक्सटेल मिलेट होते हैं। तो मिलेट हमारे दो तरह के होते हैं, नेक्ड ग्रेन, हस्ट ग्रेन। नेक्ड ग्रेन हमारा जो होगा वो आपका जो यहाँ होते हैं फिंगर मिलेट, मतलब मड़ुआ बोलते हैं, और ज्वार बाजरा ये हमारा है, इसको आपको ऊपर का हस्क निकाल के ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसका। प्लस ये आपका होता है कि हस्क ग्रेन, तो उसको ले आके प्रोसेस्ड करके तब उसका यूज कर सकते हैं। और ये बहुत तरह के हैं, आपका जितना भी फिंगर मिलेट है, आपका पॉइल मिलेट है, फिर आपका ये बाजरा है, ज्वार है, ब्राउन टॉप मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ये सारे बहुत ही, कोदो मिलेट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इन सारे में अलग अलग गुण है, इन सब में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाईली प्रोटीन रिच कार्ब्स है, प्लस आपका कोई कोई में तो आपका ये हो गया फिंगर मिलेट, इसमें आपका आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे जो मिलेट्स हैं उसमें किसी में विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत अति आवश्यक चीजें हैं। तो इस कारण से मैं मिलेट पे फोकस दे रही हूँ। प्लस आपका 2023 जो है हमारा ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था, उसी में हम लोगों को बहुत सारे अवेयरनेस प्रदान किया गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फोर फादर्स थे वो इसका यूज करते थे, बीच में ये विलुप्त हो गया, गायब हो गया। तो फिर से मेरा यही बोलना है कि फिर से आप लोग मिलेट खाइए, वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा।
1: जी मैं तो अगला सवाल ये भी करना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, ताकि पुरुष भी हैं, जो मोटापे से जूझ रहे हैं, तो वे लोग फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली मैम इग्नोर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी नहीं लेते, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं फिर बोलना चाहूंगी कि जो मिलेट्स है हमारे, उसमें जितने भी आपका वेट लॉस करने का क्वालिटी है, आपका आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, आपके बीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, डायबिटीज का जो शुगर लेवल है उसको कम करने का, ये सारा जो है इसमें पाया जाता है। तो वेट लॉस का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर वो वजन कम ही करना चाहते हैं तो अपने एटलीस्ट 24 आवर्स रिकॉल मेथड, मतलब पूरे दिन में एक टाइम अपने डाइट में यूज करें इसका, तो ऑलरेडी उनका ऐसे इससे वेट लॉस हो सकते हैं।
1: जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही सरल और उपयोगी तरीके से संतुलित आहार की महत्वता को समझाया। आपकी बातें न केवल ज्ञानवर्धक थी रही बल्कि श्रोताओं के लिए व्यावहारिक भी थी। हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं आज की बातचीत से प्रेरित होकर अपने खान पान की आदत में सुधार लाएंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाएंगे। आपका समय देने के लिए और हमारे श्रोताओं को संतुलित आहार जैसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी तवंग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो श्रोताओं, अगली बार फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही स्वस्थ से जुड़ी विषय के साथ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र तवंग डॉक्टर दिव्या पांडे से स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार विषय पर हुए भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे मिस पेमा दीचिन और मिस मुट्रुप ड्रेमा। इसी के साथ ही स्वस्थ से संबंधित कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:32 हुए हैं। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है दोनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज। कार्यक्रम का पहला धुन आइए सुनिए फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से।

आई श्रोताओं, इसी धुन पर सुनते हैं यह गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल आवाजों में। गीत समीर के है व संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही दोनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है।

श्रोता इस गीत के साथ ही दोनों व गीतों पर आधारित कार्यक्रम साज और आवाज अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मीनाक्षी मजुमदार। जिला उपायुक्त श्वेता नगरकोटी ने पुष्टि की है कि केईपनियर जिले में एसडीआरएफ टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के दौरान आज दोपहर 12:30 बजे एक और शव बरामद किया गया है। जिला उपायुक्त ने कहा, शव की पहचान 30 वर्षीय बालाड़ी माडक के रूप में हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं और 3 अभी भी लापता है। इस बीच 13 वर्षीय इलेश मारक, 46 वर्षीय ताओ अजीना और सौरभ कुमार के लिए एसडीआरएफ और केईपनियर पुलिस द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। लगातार भूस्खलन और मिट्टी खिसकने के कारण पोतीन के मेन सड़क बाधित है। भूस्खलन निकासी कार्य को विनियमित करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पितापुल पोतीन मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सड़क बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है तथा जल्द से जल्द यातायात बहाल करने के लिए आपातकालीन वाहनों, आवश्यक आपूर्ति और इंजीनियरिंग उपकरणों को प्राथमिकता दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने आज ईटानगर के लोक भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और बचाव के लिए राज्य पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेना था। राज्यपाल ने अभियोजन निदेशालय को मजबूत करने की सलाह दी। पूरे राज्य के नजरिए को अपनाते हुए राज्यपाल ने समाज को सभी वर्गों के सक्रिय भागीदारी की अपील की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिला स्थित जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नूरानांग की लड़ाई में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत प्रदान किए गए महावीर चक्र के सम्मान में तथा अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि इन वीरों के बलिदान को स्मरण करना उन सभी सैनिकों के प्रति आभार हमारी कृतज्ञता को पुनः दृढ़ करता है जिन्होंने साहस और निस्वार्थ समर्पण के साथ देश की संप्रभुता की रक्षा की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग जिले के ऑपरेशन अरुणोदय अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एक अनूठी नागरिक सैन्य पहल है जिसके तहत टिम्बू गांव से बजरंग पीक तक ट्रैकिंग मार्ग खोला जाएगा। इस अभियान का संयुक्त रूप से भारतीय सेना और निमास द्वारा संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अभियान अरुणाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देगा, स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर सृजित करेगा तथा सीमावर्ती राज्य को व्यापक पहचान दिलाने में सहायक होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ईटानगर द्वारा नामसाई में इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर एक टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य की आर्थिक विकास में एमएसएमई

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है तोरोवाल नवन शहर पंजाब से। आप श्रोताओ की ओर से आप है गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियाम थांडी, बेबी वमिका और वानी थांडी। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म सरस्वती चंद्र से यह गीत, गायिका लता मंगेशकर की आवाज में। इंडिवर की लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और इस गीत के बोल है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमें फरमाइश किए है बजोनिया जलौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श शर्तक और अलौकिक चौंसलिया, और निमादाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी पसंद पर आइए सुनिए फिल्म वो कौन थी से यह गीत गायिका लता मंगेशकर के आवाज में। राजा मेहंदी अली खान द्वारा शब्द बद पर इसे संगीत से सवारा है मदन मोहन ने, और इस गीत के बोल है लग जा गले से फिर।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नथाना गांव पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म निगाहे नागिना से यह गीत, गायक मोहम्मद रफी के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत के बोल हैं सावन के झूलों ने।

श्रोताओ, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा

व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत की बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही कुछ ही पल बाद, यानी रात के 8:15 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अरुणाचल न्यूज रेल, 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 न्यूज एट 9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है अरुणाचल न्यूज रील।
1: आकाशवाणी ईटानगर प्रेजेंट्स अरुणाचल न्यूज रील।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आज की मुख्य समाचार। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंचे। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप के साथ, जहां पर आज ग्रुप एल में पनामा और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे मुकाबले में इसी ग्रुप के क्रोएशिया और घाना का मैच खेला जाना है। दोनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं इससे पहले मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं विश्व कप में कल खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
1: फीफा विश्व कप के ग्रुप मुकाबले अब अपने अंतिम दौर में हैं और नॉकआउट की रफ्तार पकड़ती दौड़ ने विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा दिया है, जहां हर मुकाबला किसी न किसी टीम के भाग्य का फैसला कर रहा है। इसी कड़ी में ग्रुप जी में मिस्र और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।
2: The final whistle blows. Two teams that gave it everything here. What a game. What drama in Seattle.
1: और इस ड्रॉ ने मिस्र को विश्व कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। ग्रुप जी में मिस्र दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि ईरान की नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। महमूद साबेर ने मुकाबले के 5वें मिनट में ही पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि ईरान ने जल्द ही पलटवार किया और मैच के 14वें मिनट में रमीन रेजाइन ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त हो गया। इस ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 5-1 से हरा दिया। बीसी प्लेस स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड का अगले राउंड में पहुंचने का सपना टूट गया है। उधर ग्रुप एच में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं उरुग्वे का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि मैच के 42वें मिनट में स्पेन की टीम आखिरकार 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। बिना ने बॉक्स के किनारे से जगह बनाते हुए तेज शॉट लगाया, जो उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंचा। इसके बाद स्पेन ने ये मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया।
2: एलेक्स बायेना स्कोर्स फॉर स्पेन, 1-0 टू ला रोहा, गेट्स इट राइट बैक, फेरान टोरेस ऑफ द क्रॉसबार, इट इज फुल टाइम, स्पेन विन द ग्रुप।
1: एक अन्य रोमांचक मुकाबले में केप

0: वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के साथ ही फीफा विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ग्रुप एच में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा। ये उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा। केप वर्डे अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: और अब फुटबॉल के बाद बात करते हैं हॉकी की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से रौंद दिया। लंदन में खेले गए मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और एक के बाद एक विपक्षी टीम के गोल्फ कोस्ट पर 7 गोल दागे।
2: लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर्स में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। पहले पाकिस्तान से 1-0 से पिछड़ने के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्षी टीम चारों खाने चित्त हो गई। भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में लगातार अंतराल पर गोल करते हुए मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। भारत ने मैच के दौरान 36 बार पाकिस्तान के सर्कल में प्रवेश किया और 13 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, इनमें से 3 पर करने में सफलता मिली। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 18 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया, लेकिन वह कोई फील्ड गोल नहीं कर सका। भारतीय मिडफील्ड में हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाया, वहीं अभिषेक दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने लगातार पाकिस्तान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने बढ़त बनाई और 13वें मिनट में अबू महमूद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में शानदार वापसी की और 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद 26वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। 34वें मिनट में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ने एक बेहतरीन गोल किया। इसके ठीक एक मिनट बाद तेज काउंटर अटैक पर जुगराज सिंह ने चौथा गोल दागकर भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। 41वें मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार पास पर अभिषेक ने गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। 44वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक पर मिले रिबाउंड को राजकुमार पाल ने गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-1 कर दिया। मैच के 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार मूव को गोल में तब्दील करते हुए मैच में भारत के लिए 7वां गोल दागा। ये हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 17वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में स्पेन से आगे 7वें स्थान पर आ गया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक बेहद शानदार जीत और एक ऐसी ही जीत का इंतजार भारत को इस समय अहमदाबाद में है, जहां इस समय ABC मेंस वॉलीबॉल कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जब तक ये मैच के लिए समाचार लिखे जा रहे थे, भारत ने पहला सेट अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने लगातार 2 सेट जीते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के ऊपर एक खास जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, सेमीफाइनल मुकाबला एक कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ग्रुप स्टेज भारतीय टीम ने करिश्माई प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे?
0: जी शक्ति, भारत का सेमीफाइनल तक का ये सफर टीम की करिश्माई खेल की कहानी को बयां करता है। भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। और शक्ति, इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टीम ने इन 5 मुकाबलों के दौरान मात्र 1 सेट ही गंवाया है। भारत ने पहले न्यूजीलैंड को, फिर कजाकिस्तान को 3-0 से हराया, इसके बाद चीनी ताइपे को 3-1 से मात दी। सबसे अनोखा पल टूर्नामेंट का शक्ति ये आया कि भारत ने गत विजेता बहरीन को 3-0 से मात दी। इसके बाद अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से आसान जीत दर्ज कर ली।
1: जी बिल्कुल, मात्र 1 सेट गवाया था भारत ने ग्रुप स्टेज में। क्या फैक्टर्स एनालिसिस किए जा रहे हैं भारत की इस परफॉर्मेंस पे, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज है ये?
0: जी, सबसे बड़ा फैक्टर की अगर हम बात करें, जो उनके कोच है, और मैं श्रोताओं को बताना भी चाहता हूं कि उनका आज जन्मदिन भी है, और कोच जो है वो ड्रैगन मिहेलोविक है, जिन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया है। लेकिन साथ ही खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें चिराग यादव, जोएल बेंजामिन जेबराम, जेरोम चार्ल्स विनीत और सेटर अप्पुवापू मुथुस्वामी जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम के रैंकिंग को भी सुधारा। इस टूर्नामेंट में जब टीम आई थी तो 58वें पोजीशन पे थी, लेकिन

0: अब टीम की जो रैंकिंग है वो 42वें पोजीशन पे है, और रैंकिंग का ये फायदा मिलता है शक्ति की आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी जो भारत अच्छा कर सकती है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती है।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत। तो भारत को उम्मीद होगी कि ऐसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में टीम करे और वापसी करते हुए फाइनल तक का सफर तय करे। और अब बात बैडमिंटन की, जहां देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
2: थाईलैंड मास्टर्स की विजेता देविका सिहाग ने बड़ा उलटफेर करते हुए जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी को हराकर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। देविका ने महिला क्वार्टर फाइनल में दोनों गेम के अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखते हुए गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया। अब सेमीफाइनल में देविका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। डेनमार्क की इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-16, 11-21, 21-11 से आया था। वही महिला सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रक्षिता श्री को कनाडा की राहेल चांद से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष सिंगल्स में अनुभवी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झू फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत अब सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो का मुकाबला करेंगे। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिलब्रमेन को 23-21, 21-11 से पराजित कर पहली बार किसी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रौनक का सामना चीन के ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू ली यांग से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब कार्यक्रम में बात महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां कल अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू कल अपना अंतिम ग्रुप स्टेज मैच खेलने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर उतरेगी, जहां उनके सामने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश पर एक आसान जीत दर्ज की है और टीम के हौसले एक बार फिर बुलंद होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अपने सभी मैच बड़े अंतर से जीते हैं और एक मजबूत रन रेट के साथ ग्रुप में टॉप पर है। सोफी मिलिनियो की अगुवाई में 6 बार के T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने नाम के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। अगर वो ये मैच हारती भी है तो भी उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना भारत की तुलना में काफी आसान है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है और इस हार से भारत की रन रेट पर भी असर पड़ा है। भारत अपने 4 में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ग्रुप में दूसरे स्थान पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 4 के 4 मैच जीत कर शीर्ष पर है। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर टीम की खिलाड़ी राधा यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: कोई भी ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मतलब लोग जा रहे रूथलेस प्रैक्टिस कर रहे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट गेम है, कितना एक दूसरे को साथ में रखना है और एक दूसरे का प्रेशर थोड़ा नीचे को हटाना है, तो उस पे ज्यादा फोकस है।
3: भारत को अपने इन फॉर्म खिलाड़ियों से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा से टीम को खास उम्मीद रहेगी। इनके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया पर भी नजर रहने वाली है। गेंदबाजी में लगातार बेहतर कर रही श्री चरणी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जिन्हें राधा यादव, नंदिनी शर्मा और रेणुका ठाकुर का साथ मिलेगा। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इस टीम की नजर दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हुई गलतियों को सुधार कर अपने पहले T20 विश्व कप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय टीम लॉर्ड्स के इस मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर इस लक्ष्य पे भी होगी कि किस तरह से इस सफर को ऐसा बनाया जाए कि 5 जुलाई को वापस टीम फाइनल खेलने के लिए इसी मैदान पर उतर सके। और हरमनप्रीत कौर की आर्मी अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करना चाहेगी। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत को आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 18 ओवर और 5 गेंद में 100

48 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। ये पहला मौका था जब आयरलैंड ने भारत को किसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हराया है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं आयरलैंड की तरफ से मैथ्यूज हम्फ्रीज ने 3 और मैथ्यूज हॉलार्ड ने 3-3 विकेट लिए। हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर आयरलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लॉकरेन टकर ने टीम के लिए 36 गेंदों पर 50 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसने टीम को एक अच्छी बुनियाद दी और मध्यक्रम को मजबूती दी, जबकि गैरेंथ डैनली के 49 रन ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस श्रृंखला का दूसरा

पुरा है आप सभी से विदा लेने का स्पोर्ट्स कैन के इस कार्यक्रम में। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और

0: घटनाओं का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से

0: माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी

0: program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित की जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल सुबह के 10:45 पर पेश करेंगे भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कल सुबह के 11:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मन की बात का 135वीं संस्करण के अंतर्गत भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपने मन की बात साझा करेंगे। इसके तुरंत बाद श्री लोपसंग तोप्तेन द्वारा मनपा संस्करण प्रस्तुत किया जाएगा। 3:00 सुनेगा कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। शाम के 4:00 पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रतिध्वनि। कल शाम के 7:10 पर सुन पाएंगे कार्यक्रम महफिले कवाली। कल रात के ठीक 8:00 का वक्त रहेगा कार्यक्रम मन की बात का 135वीं संस्करण का मनपा अनुवाद श्री लोपसंग तोप्तेन से। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9:00 सुनिए न्यूज एट 9। श्रोताओं कल हम फिर हाजिर होंगे दोपहर के सुबह के 10:45।